साहिब जी हर जुग जुग भक्त पाया पैज रखदा आया राम राजे नाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छाया श्लोक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रो पया जन सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहों करी न होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहो जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा के हा सो कर के हा जित बह सर्व समाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिसो कहिए केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित्त गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरगमश प्याले

जो जो एको सास दातु एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सिष्ट सब पाई जी तुद आपे सिर सब गोई जन नान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जन होई आसा महला चौथा तू करता सचार मेंडा साईं जो तो भावे सोई थी सी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदिया विछोड़े आया मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माँ है तुझ में दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मेल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना ए सोई जान जाने हर गुण सद ही आव खाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवरन कोए तू कर कर विखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला।

जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार, तिस ही को हमारी सगल प्रजा जने आप सुवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रण को पल मोह कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा, दृष्ट कर फूला संतन, दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उत्कर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम, मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन से सब तारे, आप अपनी बूझ चारे, तुम सब ही तेरे तन आलम, जानत वेद पेद यार आलम,

रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सुन प्यो शंकर कैठा। सुग्री शिष्ट दिखाए अचंभव, आजीवा स्वरूप स्वंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख भय मरे। पुरख जवन पग परे त्यारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याई है, ताके काल निकने है। रचावे ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट ने तत्काला। कृपा दृष्ट तन जायन हरियो, ताके ताप तन कमो हरियो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शास्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा।

सुने गुंग जो जाए सुरस न पावे, सुने मूर्छित लाए चतरता आवे। दुख दर्द भौ निकटना तिन नर के रहे, हों जो जा की एक बार चौपे को कई चौपे। सम्मत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस पण तीन कहे जय भाद्रो सुधी अष्टम रविवार तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। श्री चिर त्रोपख्या ने त्रिया चरित्र मंत्री भू सम्मान ने 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त आपजू दोहरा। दास जान कर दास पर की जय कृपा पार, आभा दैराख मोए मन क्रम वचन विचार चौपे। मैं ना गणेश प्रथम नाऊं, किशन विशन कबू न त्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सो लिवलागी मोरी, पग इन सो महाकार रखवार हमारो।

जो ए कथा सुने अर गावे दू पाप ते निक नावे बिशन भगत की ये फल होई याद ब्याश वे सके न कोई संबंध 1755 हाड़ बदी प्रथम सुदाम तो प्रसाद कर गण सुधारा भूल परी लो लो सुधारा दो हरा नेत्र तुमके चरण तर स्तंद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर और कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो बहुत कृपा प्रसाद सोइया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद समय वो भेद गए हम एक ना जान्यो श्री स्पान कृपा तुम्हें कर मैं ना कहो सब तोय बखान्यो।

साध जना के संग पाव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माले बेदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सतगुरु जी का कोटान कोटान शुकराना है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पार बख्शिश करके अपनी सेवा लई है। आओ अगला प्रोग्राम श्रवण करिए जी। पुलचुक दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सतसंग जी आप जी ने शब्द कीर्तन जोड़े सन भाई भविंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब जी वाला कीर्तन जत्था जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। आहन पाशा भाई हरजीत सिंह जी गुरद्वारा साहब बेर साहब सुल्तानपुर लुधियाणा के कथावाचक भाई साहब जी आप जी ने लड़ीवार कथा राही जोड़नगे। उपरंत अज ते कल बंदे सत्कार योग कीर्तनी भाई साहब भाई ज्ञानी गुरदेव सिंह जी वह भी हाजिरी भर रहे हैं। अब पौने अठ तो लैके साढ़े अठ उपरंत साढ़े अठ तो ढाडी जत्था होगा। आप जी ने हाजरियां भरनिया जी आने वाले आतवान शहीदा की यादा साज रहे हैं। आउन कथा ने जुड़ना करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जय कर कीरत आखिया करते का होए बीचारो तित कर गावह सोहिला शिव रहो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरभाव का सोहिला हम वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिसदाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेल देहो सज्जन असीसड़िया जहो वै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देहे आवन

वाहेगुरु वाहेगुरु साहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु साहिब जीओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरुदेव ए नम है अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पाव काल कलेह तन माह मिटाव सिमरो जास विसंपर एक नाम जपत

तगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हो आपे आपन संग आ प्रवराते तुमरी उस तुम ते होए नान कबर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सास संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा।

सुख कनेरे कोई ना जान तुम राम तुम चेते उचा भगवंत सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सुअंग अकारी

मन अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिम रहो तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याही है त्यावन जोग जेह प्रसाद पाल पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे

दिशारि देह प्रसाद बाग मिलिख तना राख परोए प्रभु अपने मना जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सज तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख ईहा ऊहा नानक तेरी रखे देह प्रसाद करे पुन बदान मन आठ पहर कर तिसका त्यान देह प्रसाद तू विचार विहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी देह प्रसाद रसुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप देह प्रसाद त्रिनिकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।

को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाव नान जो पाव का सह सुपाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे डलम। ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रगास जैसे तारियों पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही मान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रव्याम करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल के जन अरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सिंह। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी ले ताबत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सफला। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कसे न जाया दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का तन पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी अपने अंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक।

परस सगल निस्तारे अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस मानव है प्रीत निरंजन दर्श पारत्रय रूप ना पेखे नेत्र साधकी टहल संत संग हित करन ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मान की बास न मन ते टर इंद्री जेत पंच दोह ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस वैष्णव सो जिस उपर सो प्रसाद।

आवे। वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख मह जाने अस्थूल जह वरना कव देव देश नानक उस पंडित कव सदा देश।

नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वरण थीवे, कई कोट जाख किनर पिसाज, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज,

या समाय आप उपदेश है समझे आप आपे रचया सब के साथ आप कि नवा पण विस्तार सब कछ गाह करने हार ते बिहन कह किश होए थान थरन तरे कैसोए अपने चलते आप करने हार कहो तिक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्याने

सदा जान होते सुखी। एको एक एक पछाने तुद कियो सोनी जाने नाम संग जिस का मन माने नानक तिन्हे जन्म दिन जानिया। गुरप्रसाद अपने आप सुजे तिसकी जानो त्रिसना बुझे साध संग हर हर।

दुख। जिसको हार प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेव कहो किस डरे। जैसा सात ऐसा दृष्टा है, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया। जब देखो तब सब कह मूल, नानक सो सुख में सोई अस्थूल। नह कैसे जन्मे, नह कैसे मरे, आपन चलते आप ही करे। आवन जाम दृष्टन दृष्टा क्या कारी तारी, सब सृष्ट आपे आप सगल मह आपन के जुग तराच था पे उप। अविनाशी नाही कज खंड धारण धार हो, ब्रह्मांड अलाख्य भेव पुरख प्रताप। आम जपायत नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुभावंत। सगल संसार उदरै तन मंत, प्रभ के सेव सगले उदाहरण। प्रभ के सेव दू सारण आपे मेल लै कृपाल, गुर का शब्द जप पहन हाल। उनकी सेवा सोई लांगे, जिसनो कृपा करे बिट भागे। नाम जपत पावे मिसराम, नानक तन पुरख उदम करमान। जो किस करे सुप्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सपाए होवे सोए, करने हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जय तेव जे तेह माय समाये, होए सुख निदान उन्हु बनाए। आपस को आप दीनो मान, नान प्रभ जन एको जान। सलोक सर्व कला भरपूर, प्रभ बिरथा जानन हार। जा के सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार अष्टपति। टूटी गांड हार गोपाल, सर्व जिया आपे ब्रत पाल। सगल की चिंता जिस मन माय, तिस ते बिरथा कोई ना हेरे। मन मेरे सदा हर जावे, विनाशी प्रभ आपे आप।

बृहस्पति जब अकार कह न दृष्टे तब पाप पुण तब कहते हो तब जब तारी अपन संभाल तब बैर विरोध के संग मात जब इसका वर्ण

जय भगत भगत आम जय बसरे पसार संत प्रताप दुहु पाह का पे धनी उनकी शोभा बनी आपे कब करे हम जो आपे राज भोगन निर्जोग

से समाज तेह ते पहनाई कोठाओ गुर प्रसाद नान सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख सस्यर सूरन खेत्र मैं एक

छोड़ बेनती कर हो साध संग गण सागर तर हो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुहल सहज आनंद सा।

लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव नाद मूर्त थाप्य सबे जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचय स्वयं भव घन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सु परम रहता भूत रख भेस अंगरागना रंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुग्धाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख भूत गर्भ गंजन सर भंजनाद रूप असूत अंगहीन भंगनाथ मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रथ पार

आस मन मन प्रकाश गुनगुन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसना भंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दे सुसपन जल थल महन दे सुसबियंत अनुभव नाथ तिरथर तुर आसा जन बा एक सुदा ओंकार आदि कथनिया नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल घर घर प्रणाम चिचर नाम अंश जगात अजना बात अन चंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठटा बार आठ सर मत ढीठ कर अन मरण आनंद दाता महंत हर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्काल है कलखंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववार है तृतके तरण है जाके करण है मन मान्य है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से प्रत्ये पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरनी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजवा कृत है अमृता अमृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय नृपनायक है सर्पायक है पपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जब जापन है कलंक कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकार्य नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अलादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांग बंके भंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रभंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांत अजाय अलाय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाते अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्वल प्रणामे समस्वल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्वल निवासे निर्गामंग विभूते समस्वल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्वल निवासी अजाय विभूते गजाय गरिमे हरियंग करें करीमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव स्वं सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं स्वयं भव स्वं सर्वदा सर्वजुगते दुगा

अमरे दुष्ट सबैद मंगावो आप हाद मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवार सेवक सिख सबै कर तारा मोर शान करते करे सब बैरन कुवास करे पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा तुम्हें शाट कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सातुर हमारे मारिया है आप हाद मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास भरिया वो जो सदा हमारे बच्चा श्री अस्त जू करो रशा राख रो मोह राखण हारे साहेब संसाए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जू अवतरा।

एकैठा सगरी सृष्टिदिखाय अचंभव आजुगासरूप स्वयं भव प्रच्छा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगरो दुष्ट जिते उठवतु तपाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तो जताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट न अह रचा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हव ताके ताप तनक में हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शवाए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल भासते ताहे उबारा जिनर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोखते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दोखते लेहु बचाई कृपा करी हम बर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब राता केलवे के सगल दे को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री सुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन वाचत फल पावे सुई दुखना दसे ब्यापत हुई अड़िल सुने गुंग जो जाए सुरसना पावई सुने मूड़ चतलाए चतुर्था आवई दुख दर्द भाव निकना दन्नर केरा है ओ जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहसवंत कहिजय भादर सुधि अष्टमी रवारा तीर्थ तीर्थ सतर्व ग्रंथ सुधारा सवैया।

दुई कुदरत साजिए करा संजट चाओ, दाता करता है आप तुम तो सुदेवा करे पसाओ, तो जानो सबसे दिल ऐसे जिंद गवाओ, कार्यासन जिठो चाओ, कार्यासन जिठो।

गीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे कहे रविदास आस लग जीव। चिर भयो दर्शन देखे बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला शंत

बस तुम मात पिता हम बारक ते तुमरी कृपा मैं सुख कले कोई न जाने तुमरा अंत सगले

दुख लथा नाम के महिमा संत बसे संत प्रताप दो सनते संत का संग बड़ भागी पागे संत की सेवा नाम ते आये नाम तुल कछव न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहुसात्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम मोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान खट सातर सिमत बख्या जोग व्यास करम तम किरिया सकल त्याग मन बदे फिरिया अनक प्रकार के बहु जतना पौन दान होमे कर रतना सीख टाए होमे कर राति वर्तने करे बो भाती ना तुल राम नाम बेचार नानंग मुख नाम जपी एक बार नाम खंड पृथ्वी फिर जीव मा दात पिस अगन में उत परान अनक अश्व हैवर पूंदान न्योली कर्म करे बवास जय मा संजम साधन निमक निमका सी कटावे तो पे होमे मैल न जावे हर के नाम समथ कृष्ण आहे नानंग मुख नाम जत गत पाहे।

मिथ्या तन तनक तुम्ब सभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्थि अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्ते भगत साध के शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हत्ता दुर्भ कोहरे मिथ्या नेत्र पेखत पत्या रूपाद मिथ्या रसना भोजन अस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लवावे मिथ्या तानी पर उपकार मिथ्या बासलित बिगारा बिन

उपास सियाण सब तेरा सब कह जाने आत्म की रह जिस भावे तिस लह लाए थांत ने तुर रह समाए सो

पावे साक संगमत पिंसा संग नान प्रभ सो प्रसन्न साक संग दुष्मा सामी साधु के संगमा पनीत सा संग सवनी भय सा संग न बिग पैर साक

ब्रह्मज्ञानी सल किरी नाया तमरस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्मज्ञानी तकश बुरा न पाया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी।

ब्रह्मगनी के मन परमानंद ब्रह्मगनी का सदानंद ब्रह्मगनी सुख सह निवास नान ब्रह्मगनी का नाही बनास।

ब्रह्म ज्ञानियां कथिया न जाय अदाखर ब्रह्म ज्ञानी का सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सिरका करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष बदाता

ते विश्व सकला परम कर पूजे सक पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोबे तिस भगवती की मत उत्तम होए भगवंत की तैल करे नित नीत मंत्र अर्पे बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक सा भगवंती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोधे राम ना तमें सोधे राम ना सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे।

करे। कई कोटमाश्रम आए कई कोटपत देश परमाए, जित जित लाभ तित लखना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट से जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी स्वरूप आए कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्य सोहन खतर कई कोट दे दन इंद्र से सतर। सगल समगरी अपने सुतारे, नानक जिस जे भावे तिस तिन सतारे। कई कोट राज तम सात कई कोट वेद प्राण सिमता सात, कई कोट के रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत।

कई कुड़मा के साथ संग पार दम ते लागा रंग जन को होए आसु प्रसान नानक ते जसरा धन धन कई कोड़ खानी हर कांड कई कोसकार ब्रह्मांड कई कोड़ होए अवतार कई ज्योत कीनो बस्तार कई बार पसरो पसार।

जाका दृष्ट कछु न आवे तत्का दैत प्रगटावे। जाको अपने करे बखशीस ताका लेखन कने जगदीश जियो पिंड सतिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बंतया बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बाननाई असात करन क्रम सर्व को नाथ आज्ञाकारी विपरा जियो ज्योतिष भावे सोई भंतियो। कबू नीच बै बसे कबू सोख हर खरंग हसे कबू निचंद बहार कबू ऊप आकाश प्याल कबू बेता ब्रह्म बचार नानक आप मलाम नहार। कबू नित कर भाद कबू सोए रह दें राध कबू महाक्रोध बिकराल कबू सर्प की होत्र बाल कबू होए बह बड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा। कबू अब कीत में आवे कबू पला पला कहावे ज्यो प्रभ राखे ते भी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंत करे बखियान कबू मंताई लावे ते आन कबू तट तीर्थ स्नान कबू से

तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फरे अवतार अनक जतन कर तुमने द्रवे द्रव्य को कैसे गवे आप सको जो पला का वे तिसे पलाही निक न आवे सर्व के रह जा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जाबला जाने मोत कछ होए तब इसको सुख नहीं कोए जाबे जाने मैं कछ करता तबला कर जोन में फिरता

कर्ण क्रामन करने हार इसके हद कहां बेचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रसोए जो कुछ की

संत सरन जो जन भरे सो जन युद्ध नहार संत के निंदा नानका बौर बौरे अवतार अष्टपदी संत के दुख न्याजा कड़े संत के दुख जमते नहीं छूटे संत के दुख सुख सा जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख मत होए मलीन संत के दुख शोभा देहीन संत के हत्थ के रखे न कोय संत के दुख तान पृष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नाक संग निंदक पीतरे संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन का सो लवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुख तरक जोन करमाए संतन के दुख तिशना में चले संत के दुखन सब को छले संत

संत का निंदक महा तारी, संत का निंदक टिक न पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तई, संत का निंदक दुखिया दीन, संत का निंदक सर्व रोग, संत का निंदक सदा बिजो, संत का निंदक सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पाविता उसका पे होय मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे निमित, संत के दुखी को डान लागे, संत का दुखी को सत्य आगे, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संति दुख ना सुखते त्रे, संत का दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पाविता लय मिलाए, संत का दुखी अद्वित टूटे, संत का दुखित का न पहुंचे, संत का दुखी, संत के दुखी को उद्यान पर माये, संत का दुखी उजड़ पाये, संत का दुखी की संत का दुखी अंतर के थोता, संत जो सास बिना मृत अकेलो था, संत के दुखी की जड़ किस नाहे, आपन भी जापे ही खाए, संत के दुखी को अपन राखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार, संत का दुखी यो बैलाए, ज्यो जल ब्यों मच्छी तड़फाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाप इधर नहीं तड़पे, संत का दुखी

संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी संत का दुखी को दरगे मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाय, संत का दुखी ना मरे ना जवाइये, संत का दुखी की पूजन आसा, संत का दुखी उठ चले नरासा, संत का दुख न दृष्टे कोय, जैसा पाय तैसा कोई होए, पया कितना मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोए, साब घट तिस्कयो करने हार, सदा सदा तिस्को नमस्कार, प्रभ कियुत करो दिन रात, तिस त्यावो सास ग्रास, सब कुछ वरते तिसा किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल अब करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे

जाके मन गुर की परती ते जन आवे हर पचीत भत पर सुनै तलोए जाके हृदय एको सोए सच करनी सचता की रह सत हृदय सतमो कैत साचे से साचा आकार सच वरते साचा प्रसार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नान सजा सब समाता सलोक रूप न रेख न रंग केशव त्रैगुण ते प्रभिन्न तिसे बजावे नानका जसोवे सुप्रसन्न अष्टपदी।

आनंद रूप मंगल साजा के सर्व सो सुने करता के राज में राज, राज में राज जोग में जोगी तप में तपेशक रित में भोगी त्या त्या भक्तों सुख पाया नानक तुर किने अंत न पाया। जाके लीला कीमत नाए सकल दे हरे अब गाए पिता के जन्म के जाने पू सकल।

नो बसार प्रभ अवनाशे अकंकार नाना चत कर खिन माए पूर पूर सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाए अपने कीमत आपे पाए सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नान खर नाओ नाम गतारे सगले जंत नाम गतारे खंड ब्रह्मांड नाम गतारे सिम वेद प्राण नाम गतारे सुन ज्ञान ध्यान नाम गतारे गास्पताल नाम गतारे सगलकार नाम गतारे पुरगा सपम नाम गसंग उदेश सरवण कर कृपा जस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जग सत स्थान सत पुरु केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुख समय समानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सपली सत नाम प्रभ का सुखदाई बसवास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तिन जन जा कर दे प्रवेश सत नित बुझे जे कोई नाम जब ताई गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित कर जिसके से तू करने हार अवर न बोझ करत विचार करते किमत न जाने किया नानक ज्योत पावे सुवरतिया बिस्म बिस्म भय बिस्मा जन बुझत सा स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओ दाते दो कटनहार जाके संग तरे संसार जन का सेव सोवड़ भागी जन का संग एक लिव लागी

एक रात प्रात गए मंत्र न्यंत्र एक प्रभ जाता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक पित पित प्रभ आया प्रयो तो सरनाय नानक प्रभिंती अपनी भक्ति लाए अष्टपति जाचक जा जाचे प्रभ

बंत पर्वत है पार ब्रह्म जस यज्ञ तैसा कर्म पुण पाने बसंतर माए चार कुंड तिथ समाए तिस्ते पहनाई को उठाओ गुर प्रसाद नानक सो पाओ वेद प्राण सिमत बुझ वेद प्राण सिमत मैं देख सस्य सुन उत्तर मैं एक बाणी प्रभ के सबको बोले आप डोल न कबो डोले सर्ब कला कर खेले खेल मोह न पाये गुणा मोल सर्ब जोत में जाके जोत तार स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं ए बसास संतना का पिख सब ब्रह्म संतना के हृदय सब धर्म संतना सुने सो बचन सर्वव्यापी राम संरचन जन जाता तस्किय रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो सोई सुख माने कर्ण क्राम नहर प्रजाने अंतर बसे बार पियोई नानक दसन दे समोही आप सत किया सब सत तिस पवि सगली उत्पात तिस भावेता करे विस्तार तिस भावेता एक ओंकार अनकल लखी न जाए जिस भावे तिस लाए मिलाए कम निट कम कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जस आप जनाए नानक ते जन आप जाए सर्वभूत आवरतारा सर्व नैना पिख नारा सगल समरे जागत ना आप जस आप सुना।

आजंजाल बेकार तेरे ते राम ना सुन रसना कहते कर प्रसाद प्रतारी नानक ने भी खिप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान कग चीत सुखमनी सह गोबिंद गुनाम जस मन बसे सुहोतन दान सर्व

अंगीकारो करे तेरा काल साफ सवारना सबना गला समरा स्वामी सोको मनो बसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले।

महत दसरा दो दाई दया खेले सगल जगत चंग्याईया बुराईया वाते धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।